0: अरमान मान पुछ रे मदिल गिर पिछले पैदल गिर पिछले आईने के दामे खमले फजियाम यारा खुब देता फजियाम दोस्ता खुब देता सर बख्ते आवले ले अमान अमान अमान अमान अमान अमान कुछ रे
1: मान अमान कुछ रे अमान अमान कुछ रे तब कोला ना चंबरे तब कोला ना चंबरे वक्ते जाबे मंते चल शीशा दले मंता गावे अमान अमान